0: Dagsang sharangai tatpana shin tekrem sarasats ngaji akashwani ilenishut sngato uchuzot urkya chadu kasata akashwani dilli ne samachar prabhat yang testing ne morning news sanazat
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश
2: की अध्यक्षता करेंगे।
3: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स A20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
5: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
4: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
2: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
6: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्ताव

0: प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और निविन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्य सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग

0: की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति से।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र, समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच, कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का

अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, शरद कुमार तङ ठप्प गुन्ने कसता, द ग्रेट गैम्बलर फिल्मिलु सनाजत, लुर सुमकन, आनन्द बक्सी, यङलु यङ श्रीकन, राहुल देव बर्मन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: परिचय ई फिल्म लु कसता किशोर कुमार ने सनजत लुरसुमकन गुलजार यांग लुयांग सिक्कन राहुल देव बर्मन।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला और वियतनाम के उप विदेश मंत्री वेन मिन हेंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के बीच मजबूत और विशेष साझेदारी की पुष्टि की। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने, द्विपक्षीय निवेश संधि को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार के लिए चाहत सिंह।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमरीका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेचिंग

0: के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर वार्ता शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। शी जिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत से आपसी मतभेद दूर होंगे और दोनों देशों के संबंध इस वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महान नेता बताया। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।
1: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: इससे पहले पेचिंग में श्री ट्रंप का शानदार स्वागत किया गया। श्री ट्रंप दो दिन की चीन यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बड़े कारोबारी और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी चीन गए हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेनसन हुआंग शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेजगेट भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इससे पहले भी वर्ष 2017 में आधिकारिक दौरे पर चीन गए थे। रूस ने कल यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसका मुख्य निशाना नेटो सीमाओं के पास पश्चिमी इलाकों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था।
2: इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने करीब 800 ड्रोन दागे और बाद में मिसाइल हमले भी किए। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय बड़ा हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे को 23 बार निशाना बनाया गया, विशेष रूप से प्रोकोवस्क और हुलियापोइल के पास पूर्वी मोर्चे पर भी भारी लड़ाई की खबरें हैं। अपनी सीमा के पास इन हमलों को देखते हुए पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया। स्लोवाकिया ने सुरक्षा कारणों से यूक्रेन के साथ अपनी कुछ सीमा चौकियां समय के लिए बंद कर दी। इस बीच हंगरी ने हमलों की कड़ी निंदा की और रूस के राजदूत को तलब किया। ज़ेलेंस्की ने हंगरी की इस प्रतिक्रिया की तारीफ की। यह हमला रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की युद्ध विराम संधि के खत्म होने के ठीक बाद हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि इस मुलाकात से इसराइल और यूएई के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सर्गेई लैवरोव ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत रूस सहयोग की प्रमुख परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की नई इकाइयों के निर्माण का काम जारी है। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सुबिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू एक बार फिर से हाजिर है और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपके लिए जो कि हम लेकर आते हैं हर रोज 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स। इसमें आप भेजते हैं अपनी रिक्वेस्ट और हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है एड्रेस। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com। और अब शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की उस गाने से जिसकी फरमाइश बहुत सारे लोगों ने भेजी, यानी जग्गर राम साहू, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या। इन सब ने सुनना चाहा है प्यार झुकता नहीं फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। बहुत ही प्यारा सा गाना है, आप भी सुनिए, आनंद उठाइए इस गाने का और फिर शायद आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाए, क्या पता, देखते हैं। फिलहाल तो इस गाने को सुनिए।

ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, बल्कि कुछ जगहों को देख के आपको बहुत कुछ याद आ जाता है। जैसे कुछ गाने भी आप सुनते हैं तो आपको कुछ कुछ याद आ जाता है कि ये गाना अच्छा मैंने पहली बार शायद वहां सुना था, शायद ऐसा हुआ था, और उस गाने से जुड़ा पूरा एम्बियंस जो कि आपके दिलो दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था, लेकिन उस गाने को सुनकर आपको याद आ जाता है। तो ये गानों का मजा है, इस मजे को उठाते रहिए, और ऐसा ही गाने सुनवा रहे हैं आप लोग आज हमें। तो एक गाना और है जिसकी फरमाइश आई है मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव, इन सब ने सुनना चाहा है। फिल्म है कामचोर, गाना है ये वाला।

ये गाना त्रिशूल फिल्म का था और आप इस गाने को सुनना चाहा था महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने। इनके अलावा ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा भी यही गाना सुनना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं आप सब ने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। और अब जिस गाने की बारी है, ये थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को भी कई लोगों ने सुनना चाहा है। दिग्दर्शन कविता गौर और इनके अलावा मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और बलवीर और ऋतिक, ये सब सुनना चाहते हैं मेरे अपने फिल्म का। ये

हर कोई ऐसे ही चाहता है ना कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसे वो अपना कह सके। हालांकि अपने आसपास बहुत लोग होते हैं, बस कई बार हमारी नजर नहीं पड़ती, कई बार अपने अपने जैसे नहीं लगते, बस इतना सही फर्क है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप खुद अपना बनने की कोशिश करें, तो शायद दूसरे भी आपके अपने बन जाएंगे। ऐसे ही चलती है ना दुनिया, वो गाना है ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही आप अपने बनने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत सारे अपने आप को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया की फरमाइश पर, कुदरत फिल्म से।

इस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग के बाद बढ़ते हैं अपने आखिरी गाने की तरफ, जो कि सतीश अनेजा और बिमल अनेजा की फरमाइश पर है। ये भी एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग है और राजेश खन्ना के सुपरहिट गानों में इसे शामिल किया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आपको सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म का ये गाना। नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वेरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री

0: मुफ्ती सैयद अब्बास अराग्ची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक की वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The two-day meeting of BRICS foreign ministers being hosted by India is underway in New Delhi. The meeting is being chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries are participating in the meeting. Making the initial remarks, Dr. Jayashankar said that the meeting is happening at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. He added that there

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर तस्वीर। और तस्वीर में उस जगह की बात होगी जिसे आमतौर पर हम रेत के टीलों और गर्म मौसम के लिए जानते हैं, यानी कि राजस्थान। लेकिन इसी राज्य में एक ऐसी जगह है जो कि साल भर ना जहाँ का मौसम सुहाना रहता है और एक सुखद आश्चर्य है एक तरह से। ये है यहाँ का राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। इसीलिए गर्मियों में ये सभी पर्यटकों की पहली पसंद बना रहता है। ऐतिहासिक मंदिर, हरियाली से घिरी घाटियां और शांत झीलें इस जगह को बनाते हैं खास। तो इसी की बातें करेंगे आज, लेकिन गानों के साथ साथ।

बात तो सही है, किसी ना किसी चीज से तो आपको दिल लगाना ही पड़ता है, और अक्सर होता यही है, हर इंसान की कुछ ना कुछ पसंदीदा चीजें जरूर होती हैं। किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, और जिनको घूमने का शौक होता है उन्हीं के लिए है हमारा ये प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम बातें करते हैं अपने ही देश की बेहतरीन, खूबसूरत और न जाने कैसी कैसी जगहों की, ऐसी जगह जो वाकई दिल को लुभा ले एक ही नजर में। अब हम आज हम बातें कर रहे हैं माउंट आबू की, जहां सबसे ज्यादा मशहूर है नक्की झील। यहां मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। आप यहाँ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं या शाम के समय सनसेट का आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास छोटे छोटे कैफेज हैं, स्थानीय बाजार हैं, जहां से आप राजस्थानी हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन आपको अगर असली कारीगरी देखनी है तो फिर जाइएगा दिलवाड़ा मंदिर। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने ये जैन मंदिर इतने भव्य हैं कि आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। आह और वाह दोनों निकलती है एक साथ। एक एक कोने पर बारीक नक्काशी की गई है, चाहे छत हो या खंबे या दीवार, हर एक कोना ना कला का अद्भुत नमूना है। इसीलिए तो दुनिया इन्हें चाहती है और इन्हें देखने के लिए आती है।

माउंट आबू की बातें हो रही हैं और अगर आप माउंट आबू के नेचुरल परिदृश्य को देखना चाहते हैं यानी कुदरती नजारों को देखना चाहते हैं तो फिर गुरु शिखर एक बेहतरीन जगह है। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जहां से आसपास के पहाड़ों और पूरे माउंट आबू का दृश्य आपको दिखाई देता है। गुरु शिखर पर माउंट आबू वैधशाला और गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर है। गुरु शिखर की यात्रा करने के लिए आपको 15 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद चोटी तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी और सीढ़ियां अगर आप चढ़ ही सकते हैं तो फिर तो आप आधार देवी मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर है माँ दुर्गा का मंदिर, ये भी गुफा मंदिर है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपको 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और अंदर के मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा रेंगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की पहाड़ी से ना इस पूरे हिल स्टेशन का बर्ड आई व्यू दिखता है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण कथक नृत्यांगना गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी में भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है तस्वीर। मैं हूँ नीतू आपके साथ और आज हम बातें कर रहे हैं माउंट आबू की, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और माउंट आबू जाएं तो वहां का सनसेट पॉइंट जरूर देखिए, वहां से ना डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पहाड़ों के पीछे छुपता हुआ लाल लाल सूरज एकदम अलग ही आभा देता है। और यहाँ का हनीमून पॉइंट भी काफी मशहूर है, जहां से आप घाटियों का एक विशाल विस्तृत दृश्य देख सकते हैं। वन्य जीवों से आपको प्यार है तो फिर जाइए माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर जानवरों और पंछियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ट्रेकिंग और नेचर वॉक के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। वैसे भी जब आप नेचुरल जगहों पर जाते हैं ना, तो वहां चलना अपने आप में ही खूबसूरत लगता है।

ये जो फिसलन की बात हुई है ना, ये माउंट आबू में आपको मिल सकती है अगर आप बरसात के मौसम में जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि बरसात का मौसम अवॉइड कीजिए। माउंट आबू के आसपास अगर आप देखना चाहते हैं तो माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में है अचलगढ़ किला। किला जो है वो मूल रूप से परमार वंश के शासकों ने बनवाया था, बाद में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया और इसे अचलगढ़ नाम दिया। किले का पहला द्वार है हनुमान पोल जो निचले किले का प्रवेश द्वार है। थोड़ी चढ़ाई के बाद किले का दूसरा द्वार आता है चंपा पोल और आंतरिक किले के प्रवेश द्वार, ये जो है ये आंतरिक किले का प्रवेश द्वार है और इस किले के अंदर और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा लगेगा, आप शायद उस दौर में पहुंच जाएं।

ये फिसल आप कभी भी सुन ले, आपको वो पूरा माहौल याद आ जाता है जो उस फिल्म में है। ये कमाल है गानों का, म्यूजिक का, गीतों का, जो हम आकाशवाणी पर सुनते।

हैं, सुनाते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी आपसे बांटते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं नीतू आपके साथ और आप सुन रहे हैं तस्वीर। तस्वीर में आज बातें हो रही हैं माउंट आबू की, जहां यूं तो हर तरह का भोजन मिलता है, लेकिन राजस्थान जा रहे हैं तो बनता है ना वहां का पारंपरिक राजस्थानी खाना खाना, उसका आनंद उठाना, यानी कि दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, राजस्थानी मिठाइयाँ, ये सब आपको चखना ही चाहिए वहां जाने के बाद। शॉपिंग करनी है तो यहाँ के लोकल बाजार का चक्कर लगाएं। बंधेज की साड़ियाँ, हस्तशिल्प, संगमरमर से बनी कलाकृतियाँ आप वहां से यादगार के तौर पर ला सकते हैं, अपने अपनों को दे सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं, जिन्हें वाकई में वो चीजें पसंद आएंगी। हालांकि आजकल हर जगह आपको हर स्टेट की जो कलाकृतियां हैं मिल जाती हैं, हर स्टेट के कपड़े मिल जाते हैं, कलाकारी मिल जाती है, लेकिन जहां जाकर वहां जहां की वो चीज है ना, वहां से जब लाते हैं ना, तो उसका अलग ही मजा होता है।

माउंट आबू घूमने जा रहे हैं, उससे आपको प्यार हो गया है, तो फिर सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। गर्मी में तो गर्मी होगी और बरसात में भी आपको घूमने का मजा नहीं आएगा क्योंकि हर तरफ फिसलन हो जाती है, इसलिए सर्दियां बेस्ट हैं। माउंट आबू का निकटतम रेलवे स्टेशन है आबू रोड, जो लगभग 28 किलोमीटर दूर है। अगर फ्लाइट लेना चाहें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर, वहां से आपको बस या टैक्सी लेकर माउंट आबू पहुंचना होगा।

बेकरार होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपके पास टाइम है, नहीं है तो टाइम निकाल सकते हैं आप और निकल जाइए कहीं घूमने के लिए, चाहे घर से बाहर पार्क पे चले जाइए, तब तो आपको बजट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा घूमिए फिरिए, जिंदगी को एंजॉय करना सीखिए। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। चलते चलते एक और बेहतरीन गीत आपके लिए छोड़े जा रहे हैं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरखराम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा

0: की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की
1: जी।
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार, यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
1: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
1: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
1: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
1: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
1: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
1: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो

0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
4: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
5: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
6: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल

0: पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
4: हाँ
6: दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।
4: Ha ha ha ha ha!

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई

0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं। फायरिंग।

0: ने यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
0: हाँ साहब,
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे

ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: दस इंशराए एनसीईआरटी चिंतक सत्कर नीतिक्रम उमंग एकाक चिक्सतोंग निप्गया गया चुके अपशी पसन सच ngaje akashwani lene shunjiktang in ngime chutsot chikcharu kasata akashwani delines kun la hindi yam testing ne angrezena nasulgun sanazat

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: Our discussions must advance.
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि

कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे पर लगभग 60 करोड़ रुपए व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, TRM 810 किलो हर्ट्ज पर।
1: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलो हर्ट्ज और FM 101.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी लेह की आवाज़ है। पेश है फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम

जय हिंद। स्वागत है आप सभी फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के प्रोग्राम में। तो लीजिए, सुनिए प्रोग्राम का ये पहला गाना दिल फिल्म से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना साजन फिल्म से अलका यादने की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में, दामिनी फिल्म से। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

दीवाना फिल्म से लीजिए सुनिए ये अगला गाना, कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना, खलनायक फिल्म से, अलका याज्ञिक और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये फिल्मी गाने आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। फौजी भाइयों के इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए ये अगला गाना, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण, दीवाना फिल्म से।

0: Ngaje Akashwani leni jwenjik tang in. Nyime chutsu jik tang skarma ngap chu charu kasa ta Akashwani deli ne sngul la. Urde na nasul midday news yang testing ne doper samachar sanasat.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक फुसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तिजारती कशीदगी एजेंडे में सरे फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने इफ्तिताही कलमात में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन व सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया महाज आरआई से बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत उजागर हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पेचीदा और गैर यकीनी के दरमियान दुनिया में

0: There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: डॉक्टर जयशंकर ने शरीक ममालिक का उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स तरीके कार को मुस्तहकम करने की खातिर जारी इश्तराक के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी साझेदार और मेंबर ममालिक दोतरफा और कसीर रुखी राबतों के जरिए करीबी और मुसलसल राबते में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज की ब्रिक्स मीटिंग नजरियात के तबादले और तरक्की के हवाले से हम आहंगी के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह इंडोनेशिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जामे कलीदी भारत इंडोनेशिया साझेदारी और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की अंजुमन के साथ इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अबूजहबी में मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करेंगे, जिसके नतीजे में भारत और मुतहदा अरब अमारात दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद मजबूत शराकतदारी को एक नई सतह तक ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह पर बढ़ते हुए राबतों के बाद वजीर आजम वहां के दौरे पर जा रहे हैं। मुतहदा अरब अमारात के सदर ने इस साल जनवरी में नई दिल्ली का दौरा किया था और गुज़िश्ता 10 साल में ये उनका भारत का पांचवा और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की हैसियत से तीसरा दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मीटिंग के दौरान कलीदी जामे नौयत की साझेदारी का तफसीली जायजा लिया और कई अहम समझौतों का तबादला किया। इनमें से सबसे ज्यादा अहम कलीदी दिफाई शराकतदारी के लिए काम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाना भी शामिल है, जो कि दोनों मुल्कों के बाहमी सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। कांग्रेस के असेंबली मेंबर वीडी सतीशन केरलम के नए वजीर आला होंगे। कांग्रेस लीडर दीपा दास मुंशी ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि आफात से निमटने वाली कौमी फोर्स NDRF ने अपने 20 साल के मुख्तसर क्याम में ही मुल्क के 140 करोड़ अवाम का एतमाद जीत लिया है। वजीर दाखला ने यह भी कहा कि आफात से निमटने के सिलसिले में भारत एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है और ये दुनिया में इस तरह का कदम उठाने वाला सबसे पहला मुल्क है। वजीर दाखला ने यह बात गाजियाबाद में NDRF को सदर का परचम दिए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब शाह ने कहा कि जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई आफत आती है या आने वाली होती है तो NDRF के अमले के वहां पहुंचने के बाद लोग राहत का सांस लेते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी फोर्स को सदर का परचम मिलना निहायत फख्र की बात है। जनाब अमित शाह ने कहा कि सदर जमहूरिया ने साथ ही साथ NDRF, SDRF, पंचायत, रियासती इंतजामिया, NCC, NSS और हजारों आपदा मित्रों की खिदमात को भी सराहा।
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात।
3: ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत मुंतजर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमराह अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED जायगा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ एक मामले में छापे की कार्रवाई अंजाम दे रही है। ये छापे गैर मुल्की करेंसी के बंदोबस्त से मुतालिक कानून

0: FEMA फेमा के जाब्तों के तहत 14 लोगों और कंपनियों से वाबस्ता मकामात पर मारे जा रहे हैं। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि इस मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की गई है कि जायगा टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे वसूल रही है। और बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। आलमी नंबर 12 खिलाड़ी सिंधु ने मुसलसल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेनमार्क की एमेली शूल्स को स्ट्रेट गेम्स में 28 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं सत्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के बरियान जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल को स्ट्रेट गेम्स में 21-12, 21-19 से हराकर आखिरी आठ में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। कांग्रेस ने केरलम के अगले वजीर आला के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग तवानाई का आलमी बहरान महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India asserts BRICS expected to play constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satishan to be Chief Minister of Keralam. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Satvik Sairaj Anki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
2: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
1: Dr. S. Jaishankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth.

0: Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7-seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Zahekal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satishan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग $3 अरब के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को यह मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनपिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनपिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधान

0: के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: Ngaje medium wave kilohertz 69.5 nanometers nibge ge chu kyeb jitang chu zurku yang fm ge dang chiktang chu zur chige ka ngaje akash vani le ne jun chiktang in nime chu zut nisang pe charu ka sa ta chu zut nisang skar mang ap chung ang sak pa la dar se lorik san azat in asmulla kun zes rol misal ka ne ilubo san azat

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मध्य प्रदेश से भोपाल मा पमोजी की लाख ने ग्राम अर्ग्या नांग अर्ग्या चु क्यांग ड्रग्स अजुम स्टेनोक यांग खोंग अर्ग्या बगाल ला एफ आई आर एच वजा तेनोक जंसकारी एस पी रिगजिन सांगदू बीज इंस्पेक्टर छेवांग नुरबू तांग खोंग टीमा ड्रग्स अर्ग्या बगाल ला सिर ट्रांसपोर्ट यांग पो शुल खान बो स्टोदा जा तेनोक यांग मीमांग सुजी का ई चौक सी थिंगा ली ला चौखानी स्कोर ला रिग्यूस क्यों नांग जंसकार पुलिस ला लोन मोलचेज ला जुआ फुला जा तेनोक IPL cricket in Angadang Royal Challengers Bangalore says Kolkata Knight Riders la wicket took ne pham kal tan ko yang drink phito go chu zot dun tang phed ne parla Dharamshala na Punjab Kings tang Mumbai Indians ngis ke parla dandur se no le luntin kan gyu tela da sir nasul gun ha to go chu zot or gu ni me chu zot ngis tang skar ma chu nga nga phito go chu zot nga tang phito go chu zot or dun tang skar ma chu ka sanchil la phulin jik tanok mimans kunis la da sir nasul gun Facebook YouTube tang X kunikang AIR News le gyu tyang san thupje jyo tenok akashwani leni tar na sultan

संकलन गसला ई फिल्म लोगन आकाशवाणी लेने संचेसला फलंजिकताइन कसद फिल्म लो डिक्रमिना लूट मार फिल्म लो आशा भोसले ने सनजदन अमित खन्ने सुमजत कनिलो यंगस्टिक अजत कन राजेश रोशन।

नक्सई शरंगे नमक हलाल फिल्मेलो आशा भोसले ने सनजत्स लुरसोम का निनपिन अनजान या लुयांस्टिक का निनपिन बप्पी लहरी कसिता फिल्मेलो डिक्रमिस तिंगजुपे का डॉन फिल्मेलो आशा भोसले ने संचिस ला फुलन इन दे वरिष्ठ मजद कनिलुआ यांगस्टिक अजद कन कल्याण जी आनंद जी।

0: मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांव में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign

मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लिए केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो रहा है शाम के 6:40। लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद। स्वागत है हमारे प्यारे फौजी भाइयों का आज के इस वक्त के कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में फौजी भाई सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से गीत सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता कक्क की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

आइए अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, मुझसे शादी करोगी फिल्म से। इस गीत के बोल हैं समीर और अरुण भैरव के और इसे संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

फौजी भाई के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अगला गीत सुनिए दिल मांगे मोर फिल्म से, सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में जब वी मेट फिल्म से गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार थे प्रीतम। फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लय केंद्र से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए बंटी और बबली फिल्म से, शंकर महादेवन, सौम्या राव और मैडोंसा की आवाज़ों में। गुलजार के लिखे इस गीत को धुन से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

फौजी भाई के इस कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सलामे इश्क फिल्म से गीत सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: बिल्डर्स को अरेस्ट किया है, 3-4 जगह जो है यारीपुरा में डिमोलिशन किया, स्टेट लैंड को रिट्रीव किया, रिहैबिलिटेशन में 350 जो है हमारे जो विक्टिम्स है ड्रग अब्यूज के उनका जो है 1-to-1 काउंसलिंग जो है हुई, उनको जो है अब मिशन UIHADP और जो मुद्रा योजना PMEGP जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उसमें उनको अप्लाई करा के उनको उनके पैर पे खड़ा करने की स्टार्ट की जा रही है।
1: इस दौरान कश्मीर पुलिस की जानिब से वादी के मुख्तलिफ अजला में न सिर्फ ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है बल्कि इस बुरी आदत में मुलविस अफराद के असासों को भी कुर्क या मुनहदम करने की कार्रवाइयां जारी हैं। एक ताज़ा कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने पंपोश कॉलोनी नूरबाग श्रीनगर में आदिल मंजूर भट्ट नामी एक स्मगलर की 1,20,00,000 रुपए मालियत के असासे को कुर्क कर दिया है। उधर कुलगाम पुलिस ने जिले के चिन्नी गांव फ्रिसल इलाके में जहांगीर अहमद भट्ट नामी स्मगलर की 3 दुकानों को NDPS एक्ट के तहत मुनहदिम किया है। दरियासना पुलिस ने कहनुसा बांडीपोरा में 20,00,000 रुपए मालियत का 10 मलरों का जमीन का रुकबा सरबमोहर कर दिया है। ये रुकबा न्यू कॉलोनी सोपोर के माजिद अहमद सोफी नामी एक दहशत पसंद का बताया जा रहा है। अवंतीपोरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट में बी मेडिकल शॉपों की चेकिंग के दौरान कई कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के अहतमाम से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इतिहाद के लिए दौड़ का अहतमाम किया गया। इसमें यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान, इंतजामी अमले, अहलकारों और तालिब इल्मों के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने पायदार और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में काम कर रही निजी कंपनियों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर में लोगों को घरेलू इस्तेमाल के सोलर रूफ टॉप्स रियायती कीमतों पर दस्तियाब रखें। श्रीनगर में इस शोबे की एक निजी कंपनी के एहतमाम से मुनक़दा एक तकरीब पर खिताब करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई की सूरत हाल नागुफ्तगू है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल करें।
2: हमारे लोगों को जो अंधेरा होता है घर में, सर्दियों के मौसम में हमें पानी गर्म नहीं मिलता है, हमारे गर्मियों में हमें पंखे नहीं चलते हैं, ये चीजें अगर ये कंपनी यहाँ पे करें तो इनका साथ हर एक देगा। थोड़ा सा सब्सिडाइज जो ये कर ले, मुझे लगता है कि ये चीजें अब हमारे लिए अशद जरूरत है। जम्मू कश्मीर में लोग बहुत परेशान हो गए, अगर अब हमें अपने घरों को रोशन करना है, हमें इन चीजों को आगे आकर वेलकम करना है।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। कश्मीर की सकाफती विरासत को तहफ़ फराहम करने के लिए काम करने वाली कश्मीर हिस्ट्री फाउंडेशन के अहतमाम से द फर्स्ट ट्रैवलिंग म्यूजियम एंड कल्चरल फेस्टिवल के नाम से श्रीनगर में कल से 3 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ होगा। फाउंडेशन की डायरेक्टर सुनंदा नेहरू गंजू के साथ रिकॉर्ड किया गया आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करता एक खसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 नशर होगा। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के डायरेक्टर तारिक राथर। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस ने रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट UPSC और JKPSC इम्तिहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इस बारे में J&K के स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
3: पहले साल 2023 में हमने इसको कोचिंग किया था लेकिन कोचिंग में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। हमने खाली ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी ही है, यानी बच्चा खुद आएगा और अपनी तैयारी करेगा लाइब्रेरी में बैठ के। इसके लिए नोटिफिकेशन हमने कल इशू की है, तो अब बच्चे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद एग्जाम होगा। जो बच्चे बेहतर होंगे उन्हें ये फैसिलिटी दी जाएगी। 50 बच्चे इंशाल्लाह हम साल लेंगे। 2027 मार्च 15 तक रहेगा, जब हमारा हज डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा तब तक इंशाल्लाह ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी।
1: जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और 5 साल इंटीग्रेटेड PG प्रोग्रामों के लिए दाखिले का अमल शुरू हो गया है। तफसीलात देते हुए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
4: आज हमने सुबह 11 बजे लिंक लाइव कर दी है और उस पर हम देख रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पर JKAdmissions.in, और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है,

0: उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, सिर्फ पब्लिक हॉलीडे के दिन वो कॉलेज नहीं जा सकता है फॉर एनी एडवाइस।
1: क्राइम ब्रांच की जरायम से मुतलिक खसूसी विंग ने जमीन फरोख करने के लिए जाली कागजात तैयार करने के एक मामले में बड़गाम और श्रीनगर में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक तुलसीबाग श्रीनगर के तारिक अहमद सोफी और नारकरा बड़गाम के तारिक अहमद वानी ने उस वक्त के पटवारी के साथ मिलकर जमीन के एक रकबे के जाली कागजात तैयार किए और शिकायत दहिंदा से लाखों रुपये की रकम ऐंठ ली। क्राइम ब्रांच ने लोगों से ऐसे मामलों में होशियार रहने की ताकीद की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के समाजी सियासी सलामती जमहूरी और तरक्याती मामलों पर नायब सदर के साथ तबादला ख्याल किया। पार्टी के मीडिया इंचार्ज प्रदीप मल्होत्रा ने राहुल गांधी को बकौल उनके आए रोज बेरोन ममालिक जाने के लिए तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दोगली सियासत चला रही है। शुमाली रेलवे का जम्मू डिवीजन रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर्स की हिदायत पर जम्मू के डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार की रहनुमाई में कल यानी 15 मई से जम्मू सूबे में माहौलियात के तहफ़ से मुतलिक एक खसूसी मुहिम शुरू कर रहा है। इस बरस के आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से मुनक़द की जा रही ये मुहिम 5 जून तक जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि मुल्क में खाम तेल, रसोई गैस और कुदरती गैस की वाफिर मकदार में दस्तियाबी को यकीनी बनाने की मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर एक बैन वजारती प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में कहीं से भी रसोई गैस की किल्लत की कोई इतला नहीं है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF ने अपने क्याम के 20 बरस में मुल्क की 140 करोड़ आबादी का एतमाद जीत लिया है।

0: ए की तरफ से ये मौकिफ सामने आया है कि बेजाबतगियों के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की गई है और किसी भी मेहनती तालिबे इल्म के कैरियर को नुकसान पहुंचने नहीं दिया जाएगा। ये बयान यकीनन अहम है, मगर अवामी एतमाद सिर्फ बयानात से बहाल नहीं होता बल्कि अमली शफाफियत और सख्त एहतसाब से कायम होता है। ये मसला सिर्फ मुल्क के बड़े शहरों या मखसूस रियासतों तक महदूद नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के तलबा भी इसी बेयकीनी और जहनी दबाव का शिकार हैं। यहाँ के नौजवान पहले ही महदूद तालीमी वसाइल और मआशी मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए सख्त मेहनत करते हैं। ऐसे में इम्तिहानी निजाम पर उठने वाले सवालात उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर देते हैं। जरूरत इस बात की है कि इम्तिहानी निजाम को जदीद और जवाबदेह बनाया जाए ताकि आने वाली नस्लें ये महसूस करें कि उनकी मेहनत का फैसला काबिलियत करेगी न कि किसी निजाम की कमजोरी पर मुनहसर होगा। एक कौम का मुस्तकबिल इम्तिहानी मराकज में तैयार होता है, इसलिए वहाँ एतमाद की हिफाजत सबसे बड़ी कौमी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
1: नजे आकाशवाणी लेने श्रिंजक तांग सनिशुचोत रिके अच्छा दो कैसे था पोमो बने डिक्रम पोमी जिक्स दिन संचेस लपुलिन डिक्रम फुलकन गुन देचे नामो तांग जिक में त्यांग डुल डिक्रम ए कोडिक सतकन सेरिंग छोरोल।

0: kati yungdar chari ya zhuk.
1: Taa yunga taa latak sinam kwa tizub nyok shiang dhukpa. Kani yungdar jik sal dhukse na goma taa sung tang chas testing buna tene tuj gyun yungdar la ma cha yung zhuwa pute bo chas. Ya jungme ka certificate po nena shio chas. Te tsuk si yunga taa lops mangpo jang yunga taa tuj gyun zik shas la yung dhukpa. Shkyo taa san yunga kazuk shik molin. I yungdar jik cirka jaya shkyo pa nepala tene goma nepala sir nang jin jang go shas. Ya tuj gyun shkyo go shas. Tsam jik lop jung sala te gun tuz tuse ka nen go shas po tsam jik khaksa neno.
0: Face ngatari duk chati mena la te biometric chati mena la te chobet kele ngalu ne met pin daksa ote chok som sa du gele te ang na 90% attendance yot te mane khona eligible khona jam assessment tang chesi pe gele daksa ngal chok mir ta daksa pura online sung pa te mangpo te mana ngira mul khan chok mangpo ji ke ja khachi gyon ses ting ne ja khachi ne duk sang du gele skyod mas kyod ele daksa ta khon main na ting ne chi training ja yong na pa che yong chung yen chis man gele lanji gi na zuk cha cha drop out cha cha ते फेस सुजिक स्क्यो देना तेने ट्रेनिंग बो सुजिक या छारुक जरते मार्क्यो दा रंगरा दोतपा नंगजिन तेने खोते कन कजु युंगो स्पेलिंग का छोंगलास बो खुरते युंगो स्पेलिंग यान चीज दु त्यो थुक्साम सालते त्यो हाम आगो ना तेने इक स्क्यो तंगा जा नंगे पो डिस्कस छोस्ते टाप छोस्ते चिने का खोने पे फंचे सिख दु तें ते हिसाब अंगता अस्ता से ते हिसाब शिंगता जोंदर तंग छे सिनो
2: ने ना तेने ना ते खुरते जो बस क्यों किया ते खुरते खुना छोंलास पेचिस ताई माता इंगिस जो ना तेने मंगपो टीका नंदो पहले की ताई उचो से तीन आना यो ता ते ना ये समय ना हाँ मगवा ना समर गले ची चुचेन जर कान बता खोलना चे जना ता मंगपो जिक ता खंपा युक्त संस पा हाँ मगवा स पहले ची चुचेन जर कान बो ते फिर खोना गाइडेंस सब हाँ मथो वाइन कान चोसिंगा छोर रगले ते घुमाई का जुक चुआची ना गाइड टी ना ते टाइम का खोने सेम्पो जना सेम्पो जुक चोस नंद पाए घूमे का लेमो जो से रा संबाद से गया टी ना तेने खोन ला काउ फंचिस दु ते हिसाब से जोंदार बंगा ता खोन ला पुलिंग ना तेने खोना ने मिसे छिपित पगिया ला पुतियन चीज
1: कसा जो थुक जे छे कुजब सुनम छ जंग ले निरंग दिरिंग आ जे लेलुंग टुन खा पमु गुने डिग्री मिना शिक्योते नते लादर से चीज से नंग को स्टेट बैंक ए छक ने कजुक जोंदार ए छार्जी जिगो तेवेस को ला माजिब सल मोला जा दियां जुनु गुन या मिमां सुजिगे सल यार के तो दोत पायो दो यांग ता सोंदे यान लाख सुसु सुसु पेचे से तो दोत पायो न देन इचो सल गुन इकाय शिकोते जंग यान चेस स्कास पे को ला माजिब सल मोला जा निरां डिग्री मिना थुशिस ला थुजे छेजले
0: थुजे छेजु
1: या देचिनले दसांगा ता टिवेटिले ने डिग्री मांग सानचेस ला फुल ओले जु
3: कसाचु
1: डिग्री मिस्तिन जु पेका सनकन लंगे समय थुग्यां से फे ग्रुप नमगेल नंग ठोपा गुने सला जा त्याने इलु संचेस ला फुलिन तेने इना लुन अंगे पुंगा तांस के दिने डिग्री मेकाने गोंस पा जुन
3: जुले

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर,

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
7: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरीटाइम एजेंसी

0: प्लीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
2: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
3: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
2: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है।

0: है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The theme of the event is